देव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे रहाओ। तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओडे कांबली, तन तन तू माता देव की, जय ग्रह रमैया कवला पति। तन तन बन खंड बिंद राबना, जय खेले श्री नारायणा। बीन बजावे गोदन चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। मेरो बाप माधो तू तन केसो, साम लियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बेकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारियले। दो शासन की सभा द्रौपदी, अम्बरले तो उभारियले। गौतम नार अहल्या तारी, पावन के तक तारियले। ऐसा अदम अजात नाम देओ, तो शरणागत आयले। सबै कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे रहाओ। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बोना नारे। अथावर जंगम कीट पतंगमा, काट काट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता, और

जसनो साचा शिव ते लाए गुरमुख बिरलै किसै बुझाए अमृत के सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो।

जप्यो नाम सुख जनक गुरु बचनी हर हर शरण परे दारद पांज सौ धामे मिलियो भगति पाए तरे।

हर हर भगत परे भंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जप मर जिया जप हर हर नाम सदा बजियो

जी हर्षो प्रसन्न हो मेरा स्वामी हर सिमरत मल्ला जापे जियो माया मोह बिकम पारी क्यों तरिय दुतर संसारी।

होई जन नानक गुण गावे बेचारा हर पावे हर थाए पापे जियो मारु महला चौथा

मेरे ठाकुर कहते अगंत धारे मोय दीन अलप मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहो बाल्मीक सुविचारो तरयो बदक तरे बेचारे एक निमक मन माय अराध्यो गज पद पार उतारे।

जमा जो समरथ सर्व गुण नायक तिलको कमन गाव सरे छोड़ जाए कन पितरता को उआ को फिर फिरताव सरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सरे बैरी संग रंग रस रचया तस्यों जीरा जार सरे राव

पंजवा अंतरधाम में सब विद जान तिसे कांडुलारियो अस पाव चर कन पितर अगन संग लै जा रो मूड तै मंते राम बिसारियो लूण खाए कर राम खोरी पिकत नैन बिदारियो राहु असाध रोग पुजियो तन पितर टर्त न का उठारियो

माला सन्यासियों एक तीर्थ पर में उसमें क्रोध बेगाना कुंगर बांध पाए रामदासा रोटियन के यो पावा

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर यगमा यगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा।

0: जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब सिंह जी आप जी नूं पित्र बाणी शब्द कीर्तन राही जोड़ रहे सन। भाई भुपिंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब जी महाराज कीर्तनी जथा पासों जथे बहुत बहुत धन्यवाद। हम ढाडी वाले इतिहास राही जोड़नगे। भाई पूरन सिंह जी अरशी उन्हां ढाडी जथा उन्हां पासों प्यार से सरण करो जी। उपरंत सारी रात लग अमृत वेले तक कीर्तन दरबार कीर्तन राय सबाई होणगे। आप जी ने हाजरी भरनी है जी। अते कल दया तौर दे विशेष दीवान मौजूदा संघर्ष विच होए शहीदां दी यादां विच साजरे हन। आप जी ने हाजरी भरनी। वाहिगुरु जी का खालसा।

डोल जावा ना जुल्म दे सामने मैं, लाज रख लही सच्ची सरकार मेरी, सिखी के साथे स्वासा दे नाल ने बजे सिदक जित जे होवे ना हार मेरी, लेंदी खोपरी लाथ जे लख पावे खुंडी होवे ना इश्क दी तार मेरी, कलम कमल जुल्मा दी हो जावे अत पावे जुल्मा दी हो।

चिंता सगल विनासी कर कृपा अपनो कर लीना मन वस्या अविनाशी ताको बिघन न को लागे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हर रस चाके।

0: Aye. Oi, guru. Sonda Vaheguru Ji, humri karo hat de rachha, purn hoye chit ki ichha, tav charnan man rahe hamara, apna jaan karo pat para, humre dusht savai tum kaho, aap hat de moye bachavo, sukhi basai moro parvara, sevak sikh savai kartara, mor chaanj kar de kariye, abhen ko aaj simriye, purn hoye hamari aasha, aur bhajan ki rahe pyaasa tumhe shaad koi avar na tyahu jo bhar chaho so tum pe sevak sikh hamare tariya aap hath de mujhe bariya ho jo sada hamare pachha raakh le moy raakh na hare
1: sahib sant sahib ke hare din band dushtan ke hanta tumo
0: Kal Pai Brahma Bhaktara
1: Kal Pai Simju Bhaktara
0: Kal Pai Karbisan Prakasa
1: Kal Pai Kiya Tamacha
0: Jaman Kal Jogi Sevitiyo Jaman Kal Sab Lok Swara
1: Namaskar Hai Tahe Hamara
0: Jaman Kal Sab Jagat Banayo
1: Devdai Tishne Pajayo
0: Aad Ante Kevatara
1: Soi Guru Samjilo Hamara
0: नमस्कार तुसी को हमारी
1: सकल प्रजा जिने आप सवारी
0: शिव कण को शिव गुण सुख दियो
1: सतरण को पल मोह बद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत
1: भले बुरे की पीर पहचानत
0: चीटी ते कुंचर अस्थूला संतन दुख पाए ते दी एक एक की पीर पहचाने जब कुद कर करा कर तारा
1: प्रजा तत तब दे हे पारा
0: जब आकर करत हो कब हो
1: तब मैं मंत्र दे तर सब हो
0: जेते वंश सब तारे सब ही ते रहत निरालम
1: जानत भेद भेद अर आलम
0: निरंकार निरपार निर्लंभ
1: आद अनिल अनाद संभ
0: ताका मूढ़ चार पिता
1: जाको भेव न पात बेदा
0: ताको पर पान अनुमानत
1: महामूर्ख कछ भेद न जानत
0: देव
1: को कहत सदा शिव
0: निरंकार का चीत नेत्र
1: आप अपनी बुद्ध है जेती
0: बरहत पिन पिन तो तेती
1: समरा लखा न जाए पसारा एक रूप अनूप सरूपार अंडज जेरज से तजकीनी
0: कुछ खान कहो अच्छीनी
1: कहो कूल राजा है बैठा
0: समट पर संतर कैठा
1: सगरे सृष्ट दिखाए चंबा
0: आद जुदा स्वरूप से अंभव
1: अब रक्षा मेरी तुम करो
0: सिखो बार सिख संगरो
1: दुष्ट जिते उठवत तपाता
0: संदेश करो
1: ये अस्तुय तब शरणी परे
0: के दुष्ट कथ वै मरे
1: पुरख जवन पग परे तिहारे
0: के तुम संकट सरतारे
1: जो कल को एक बार ते है
0: ताके कार निकट ने है
1: रचा होए ताहे सब काला
0: दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला
1: कृपा दृष्टन जाहे निहर हो
0: ताके ताप तलक मोहर हो
1: रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई
0: दुष्ट चाच सके न कोई
1: एक बार चिंत मैं संभारा
0: आत्मास ते ताए बारा
1: जिन नर नाम तिहारो कहा
0: दारे दुष्ट दो तेरा
1: खड़ग केत मैं शरण तिहारी
0: आप हाथ दे ले उपवारी
1: सर्व ठार मोह सहाई
0: दुष्ट दो ते ले हो बचाई
1: कृपा करी हम पर जग माता
0: ग्रंथ करास पूर्ण सब राता
1: किर्भिक सकल देह को हरता
0: दुष्ट दो खेन को छय करता
1: त्रियस्त जपय दयाला मन बांचत पर पावै सोई दुख नट सब व्याप्त कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरत ना पावई सुने मूड चित लाए चित्रता आवई दुख दर्द पौ निकट तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सह सपने जय अर्ध सह

अगम जैसे लहर मैं ओदद, जल केवल जल माही। पावन पवित्र अंग 657। वाहिगुरु जी का खालसा।

नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेस तन माहे मिटावो सिमरो जास विश्वम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत शुद्ध अक्षर कीने राम नाम एक अक्षर किनका एक जिस जीव बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहि उदारो सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमर है जिन आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन

रह चलै। जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आगावै। जेह मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जह आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै।

जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत स्याणप जमका पहु व्यापै, अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। छूटस नाही ऊब पयाल, मोहे व्यापह माया जाल। अवर करतूत सगले जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए।

सकोए। सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मह उत्तम किरिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्दम मह उद्दम भला, हर का नाम जपहो जी सदा। सगल बानी मह अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी।

अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन मह जिन्ह उबारिया। बार व्यवस्था तुझ प्यार दूध, पर जोवन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साक सैन, मुख अप्याओ बैठ कौ दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्स लेहो तौ नानक सीजै। जह प्रसाद धर ऊपर सुख बसहै, सुत प्रात मीत बनता संग हसहै। जह प्रसाद पीबह शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमला। जह प्रसाद भोगह सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसह त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रव्यापे। आद अंत जो रखन हार, तिस स्यो

रंग रसै दृढ़ कर मन मनह प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार।

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान कछ

मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौ हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर बकार कौताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लये। बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध, बिन सिमरन

जा सका है। जह प्रसाद सुन है कारण नाद, जह प्रसाद पेख है बिस्माद, जह प्रसाद बोले अमृत रसना, जह प्रसाद सुख सहजे बसना, जह प्रसाद हस्त कर चल है, जह प्रसाद संपूर्ण फल है, जह प्रसाद परम गत पाव है, जह प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जह प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ कौ मूल।

प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्ब निदान प्रभ तेरी मया, आप हो कछु न किन्हु लया, जित जित लाव हो तित लग है हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होए, सुनमीता नानक बिनवंता, साध जना के अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग

साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध कै संग अगोचर मिले, साध कै संग सदा प्रफुल्ल, साध कै संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ स प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस स्यो नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर, साध कै संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग ना ही होताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग

साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद ना जान है, जेता सुन है तेता बखयान है। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लाग।

ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।

मन की बासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करतो वह कर्म करत होवै न कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओहो बैसनो परम गत पावै। भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगौती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगौती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म महसोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मह जानै असथूल, चहु वरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मह जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुग्ध पाथर कौ तारै, सर्व रोग

जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर्ग है परवान, अपने दास कहो आप कृपा करै, तिस दास कहो सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी,

दानव इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थशास्त्र।

अमर भये साध साध ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्मरस सुख सहज समाव है, अपने जन कौ सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाहीं कोय, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी। करण करावन करना जोग, ज्योतिष भावै सोई होग, खिन मह थापो थापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे धार अधर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै ता पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण पाखै, प्रभ भावै ता पतित उदारै, आप करै अपन बीचारै, दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसकै हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत विख्या मह रचै, जे जानत अपन आप बचै, भरमे भूला दह दिस धावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत।

कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बखसीस ताका लेखा न गनै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोए फुन थियो कबहु ऊच नीच मह बसै कबहु सोग हरख रंग हसै कबहु निंद चिंद व्यवहार कबहु ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू निरत करै बहु पात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की होत रव।

ज्ञान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होय जिया, अनक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभु भावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय। कबहू साध संगत इह पावै, उस अस्थान ते बहर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गा।

अष्टपदी। जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन। जो जाना मैं जो वनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कौ कर्मवंत कहावै जन्म मरे बहु जोन परमावै। धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक ईहा मुक्त आगै सुख पावै। धनवंता होए कर कर बावै तृण समान कछ संग न जावै। बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए बिनास। सब ते आप जानै बलवंत खिन मह होए जाए पसमंत। किसै न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करै हौ तारे श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै। आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इस को सुख नाही कोए। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारै को बैरी मीत तब लग ने चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन तूट।

तृप्त आवै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करनै हार इसकै हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हू कै संग बुझै देखै करै विवेक आपै एक आपै अनेक मरै ना बिनसै आवै ना जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओह करनै हार उस ते भिन्न कहो किछ होए थान थनंतर एकै सोए

तन मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाना इत उत की ओह सो जी जाना नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हें निरंजन जानिया गुरप्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ मह सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सोहिला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सो दत सो दत सो दत सीजिया गुरप्रसाद तत सब बुझिया जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किछ जन्म नह किछ मरै आपन चलत आप ही करै आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किछ खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनों कृपा करह बड़ भागै

सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार, जाकै सिमरन उदरिया नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गंढ नहार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घट सोहै। धनवंता होए क्या को गर्बै, जा सब किछ तिसका दिया दरबै। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै। जे को होए बह दातार, तिस देन हार जानै गावार। जिस गुर प्रसाद तूटै हौ रोग, नानक सो जन सदा अरोग। ज्यो मंदर कौ थामै थमन, त्यो गुर का शब्द मनै अस्थमन। ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए बिगास। ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की बाछो धूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइयै, पुरब लिखे का लिखिया पाइयै। दुख सुख प्रभ दे वनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो कछ करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरह अजान। कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे महतोल। लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए। एहो वापार विरला वापार, नानक ताकै सद बलिहार। चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो इसनान, साध ऊपर जाइया कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइया, साध संग हर कीर्तन गाइया। अनक बिघन ते साधु राखै, हर गुण गाए अमृत रस चाखै। ओट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक कौ जीवा लनहार, भूखे कौ देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे। सब किछ तिसका ओ करना जोग, तिस बिन दूसर होआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया।

सच करणी सच ताकी रहत सच हिरदा सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्ता साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोय आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ।

अनद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनी है घर ताकै राज मह राज जोग मह जोगे तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगे त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत ना पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल

नाना भेख करह एक रंग, नाना बिद कीनो विस्थार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहयो पूरन सब ठाए, नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिम

संग सेवक कहो प्रभु पालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारै नानक सो सेवक सास सास समारै अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास कौ देव डाई अपने सेवक कौ नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखै ताकि गत मित कोय न लाखै प्रभु के सेवक कौ को न पहुँचै प्रभु के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मह कल राखै भस्म करै लश्कर कोट लाखै जिसका सास न काढ़त आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बहुपात

की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सोझी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक यो जान जो जान तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुवाओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करै।

कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लखवार चुपै चुप न होवै जे लै रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सु सियाणपा लख हो है ता इक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई हुक्मी होवन जिया हुक्म लै वडियाई हुक्मी उत्तम नीचा हुक्म लिख दुख सुख पाई है कना हुक्मी बगसीस है हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बार हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमे कहे ना कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइया चार

कथना कथि न आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुकमी हुकम चलाए राहु नानक विकसे वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या पाहु अपार आख है मंग है देहे देहे दाद करे दातार फिर के अगे रखी है जित दिसे दरबार महो के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख दुआर नानके वह जानिए सब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनी है मन रखी है भाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिया समाई गोरी सर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हाँ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुराक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जित सुभावा विन पाणे के नाय करी जेती सिर ठे उपाई वेखा विन करमा के मिले लई मात विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुराक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा ना उर खाए कै जस कीर्त जागले जे तिस नजर ना वई तां वात ना पुछे के कीटा अंदर कीटकार दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनयाय सिद्ध पीर सुरनाथ सुनयाय धरतवले आकाश सुनयाय दीप लो पाताल सुनयाय पोय न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनयाय दुख पाप का नाश सुनयाय सर ब्रह्माइंद सुनयाय मुख सलाहन मंद सुनयाय जुग जुगत तन भेद सुनयाय सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनयाय दुख पाप का नाश सुनयाय सत संतोख ज्ञान सुनयाय अठसठ

कही ना जाए जे को कहे पिछे पिछताए कागद कलम न लिखन हार मने का बै करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै सुरत होए मन बुद्ध मनाए सगल भवन की सोध मनाए मोह चोटा ना खाए मनाए जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै मार्ग ठाक न पाए मनै पथ स्यों प्रगट जाए मनै मग न चलै पंथ मनै धर्म सति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै पावे मुख द्वार मनै परवारे साधार मनै तरे तारे गुर सिख मनै नानक भवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरेग ध्यान जे को कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझे होवे सचियार तबले उपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते भारत ले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम।

गावहि सुर ब्रह्मा देवी सोन सदा सुवारे गावहि इंद उदासन बैठे देवत्या दर नाले गावहि सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावहि वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावहि मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतने उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले।

राजेश्वरं परम रूपे नमो जोगा जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धा नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता आपेखी आपरमी आपोगी आपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते।

नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परनासी अनूपे आरूपे समतुल निवासी

आए, ना चितरे ना मित्रे परे हैं पवित्राय। पृथ्वी से आदि से आदृ से आकृ स भगवती शांत त प्रसाद कथ दे के आ छिज देसे के आ भिज भेस के आ गंज करम के आ भंज परम है।

दिस विस अभांड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहु एके सदा ओंकार आद कथनिया नाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम

गंजी अलिखे भयंग प्रयाद शांद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तुल प्रणासे अगुंजल अनामे सुमस्तुल निवासे रिकांग बैपूते सुमस्तुल स्वरूप कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बैपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमुल को निंदा सुमस्तुल निवासी

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एके की पीर पछाना है, घट घट के पट पट की जाना है। जब उद कर करा कुरतारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब या करक कर तू कब हूं, तो मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बदना सृठ सब धारे, आप अपनी बूझे उचारे।

मन वसावै नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरी कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार सच नाम उधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सात सुखमा नए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किया गुरु बिटो जिस दिया वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच सब दित घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुद जिन को सेना मर के लागे कहे नानक तै सुख वाते तित घर अनद वाजे

तुम रिंगत मित तुम ही जानी नानक दास बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाय। श्री अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिह जिठ

गोविंद सिंह दसवें पातशाही साहब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया

जगत बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश माल पाख खाहे, असंख निंदक सिर कर

जाई मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करै बेपूत खिंता काल कुआरी काय जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीते आदेश ते सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जो जुग एको वेश भुगत गया।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, एक दूजी बहु लखो हे लखो वह लख वीस, लख लख गेड़ा आखिय एक नाम जगदीश। ए तराहे पत पवड़िया

ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद सर्व खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध।

संत प्यारे हो, अकत की करह कहानी, करह कहानी अकत केरी, कित द्वारे पाईए, तन मन तन सब सौंप गुरु कहो, हुक्म मन्या पाईए, हुक्म मन्या हो गुरु की रागा बहु सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संत हो, कथियो अकत कहानी।

ऐसा सतगुर जी मिलै तिसनों सिर सौंपियै विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहै हर बसै मनिया हरे

आप अमुलक है भगत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रस मेरी मन बन जा रहा हर रस मेरी मन बन जा रहा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपियो जी अहो लाहा खटियो देहाड़ी यो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कहे नानक हर रस मेरी मन हुआ बनजारा ए रसना तू मन रस राच रही तेरी प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाइए सतगुर मिले जिस आए कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए

एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासे होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिह जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दया में ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया

जिन्ना सिंह सिंघणिया ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चिरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसा सुवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै

कृपा करनी पातशाह जी समुची बाणी पढ़द्या सुनद्या भुल जुग दी खिमा बख्शना। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव आईया संगतां दे परिवारां दे हिरदे ते वसाउणा। सच्चे पातशाह जी एक श्री अखंड पाठ साहिब दी सेवा भाई जसपाल सिंह सुखजीत कौर समूह ढिलों परिवार वालों सच्चे पातशाह जी अपने बच्चों की मनोकामना पूरी होने सच्चे पातशाह जी आपका शुकराना करद्या होया करवाई गई है। कृपा करनी पातशाह जी मेरा प्रयाथ रखना समूह परिवार को देह रोगता चढ़दियां कला बख्शनिया किरत कमाइया बरकत

पराय अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो आप हाथ दे मोहि बचाबहो सुखी बसे मोरु परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बरचाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पलम बद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतान दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है काट काट के पट पट की जाना है जब दुकरख करा करता रा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तो मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपने बूझ उचार तुम सब ही तेरे तन रालम जानत बेद पेदर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा।

चलो मैं आओ दिखाऊंदा हां पत्रकार हो बैजो थोनू हाल सुनाऊंदा हां पत्रकार हो बैजो

0: जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख संघर्ष दान शहीद होए समूह योद्धियों की याद विच जो सालाना शहीदी समागम गुरद साहब फ्रीमाउंट वालों उलीकिया गया सी, वो महान योधे जिन्होंने अपना आप तो वारिया ते अपने परिवार भी वार दिते, उन्हां समागमां दे विच साढ़े पास पहुंचे पं प्रसिद्ध ढाडी जत्था भाई पूरन सिंह जी अरशी, जो कि इन्हां समागमां दे विच साढ़े पास विशेष तौर पर पहुंचे सन, जिन्हों का इस फेरी का अज ये आखिरी दीवान सी। उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्होंने फ्रीमाउंट दी स्टेज नूं अपने कीमती समय विचों समा कढ़ के समा दिता। मैं हुण बेनती करां कि साढ़े सत्कारयोग भाई दिलवाग सिंह जी वल्लों कि इन्हां नूं गुरु घर वल्लों सरोपाव नाल सन्मान किया जाए। बोले सो निहाल